0: ᱟᱜᱮ ᱴᱨᱟᱠᱤ ᱵᱤ ᱧᱮᱢᱩ ᱥᱮᱨ ᱜᱩᱱᱩᱜᱟ ᱢᱟᱝᱞᱮᱥ ᱜᱤᱛᱷᱟᱝ ᱪᱷᱟᱱᱞᱤ ᱪᱚᱜᱮ ᱟᱨᱮ ᱥᱮᱨᱫᱮᱱ ᱪᱷᱟᱝ ᱥᱮᱨ ᱜᱩᱱᱩᱜᱟ ᱜᱞᱮᱭᱟᱝ ᱥᱤᱜ ᱥᱛᱜᱪᱷᱮ ᱞᱟᱝᱪᱩᱨ ᱡᱤᱥᱞ ᱪᱷᱩᱯᱟᱜᱮ ᱟᱭᱟᱝᱠᱟᱨ ᱥᱴᱮᱱᱛᱮ ᱪᱮᱨ ᱥᱚᱝ ᱥᱮᱨ ᱜᱩᱱᱩᱜᱟ ᱛᱚᱱᱮ ᱥᱤᱜ ᱟᱞᱟᱢᱟᱱ ᱡᱤᱜᱢᱩᱜᱮ ᱠᱷᱟᱝ ᱪᱤᱥᱩ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟ ᱢᱮᱱᱡᱟᱜᱮ ᱥᱮᱨ ᱜᱩᱱᱩᱜᱟ ᱢᱟᱝᱞᱮ ᱥᱤᱜ ᱟᱞᱟᱣᱟ ᱟᱨᱜᱤᱱᱡᱤᱱ ᱛᱟᱨᱠᱮ ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱢᱚᱢᱩ ᱥᱮᱨ ᱜᱩᱱᱩᱜᱟ ᱛᱚᱱᱮ ᱥᱤᱜ ᱟᱢᱪᱷᱩ ᱪᱷᱮᱨᱛᱮᱝᱜᱮ ᱪᱤᱱ ᱟᱢᱟᱱᱭᱮ ᱫᱟ ᱠᱟᱨᱥᱢ ᱨᱮ ᱥᱮᱨ ᱜᱩᱱᱩᱜᱟ ᱛᱚᱱᱮ ᱥᱤᱜ ᱟᱞᱟᱢᱟᱱ ᱡᱟᱢᱵᱟᱜᱮ ᱟᱞᱮ ᱥᱟᱝᱥᱟᱝ ᱞᱟᱝᱱᱟ ᱪᱮᱪᱤ ᱭᱚ ᱥᱮᱨ ᱜᱩᱱᱩᱜᱟ ᱢᱟᱝᱞᱮ ᱥᱤᱜ ᱟᱞᱟᱢᱟ ᱟᱨᱤᱱᱪᱤᱱᱟ ᱨᱚᱢᱟᱜᱮ ᱥᱟᱝᱞᱟᱨᱤ ᱞᱟᱢᱩ ᱥᱮᱨ ᱜᱩᱱᱩᱜᱟ ᱥᱮᱨᱜᱷ ᱟᱞᱟᱣᱟ ᱴᱨᱟᱠᱤ ᱛᱚᱱᱡᱤᱵᱠᱮ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱥᱮᱨ ᱜᱩᱱᱩᱜᱟ ᱜᱞᱮᱭᱟᱝᱥ ᱠᱤ ᱪᱮᱠᱚᱴᱤ ᱥᱮᱭᱚᱞᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱴᱩᱯᱩᱱᱟᱢ ᱵᱟᱜᱤᱭᱟᱝ ᱟᱪᱩ ᱛᱟᱛᱩᱝᱜᱟ ᱠᱟᱞᱢᱫᱮ ᱠᱷᱟᱯᱨᱟᱝᱩᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱟᱱᱥᱟᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱡᱤ ᱞᱟᱜᱪᱤ ᱠᱟᱨᱥᱟᱢᱱᱟᱭᱟᱝ ᱟᱪᱩ ᱛᱟᱛᱩᱝᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱠᱷᱟᱯᱨᱟᱝᱟᱝ ᱛᱷᱤᱜᱵᱫᱮᱱᱪᱤ ᱡᱤᱜᱥᱢᱱᱤᱜᱮ ᱥᱮᱱᱫᱱᱟᱨ ᱱᱟᱛᱟᱝ ᱛᱷᱤᱜᱵᱫᱮᱱᱪᱤ ᱡᱤᱜᱥᱢᱱᱤᱜᱮ ᱥᱮᱱᱫᱱᱪᱤ ᱛᱷᱤᱜᱵᱫᱮᱱᱪᱤ ᱡᱤᱜᱥᱢᱱᱤᱜᱮ ᱨᱱᱟᱜᱥᱢ ᱛᱷᱤᱠ ᱠᱟᱞᱢᱫᱮ ᱠᱷᱟᱯᱨᱟᱝᱵᱟᱨ ᱫᱚᱱᱡᱢ ᱵᱟᱪ ᱦᱮᱨᱱᱟ ᱨᱚᱢᱟᱜᱮ ᱞᱟᱜᱥᱢ ᱱᱟᱢᱛᱟᱠ ᱜᱟᱥ ᱥᱮᱜᱮ ᱭᱚᱞ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱮᱨᱱᱜ ᱞᱮᱱᱥᱮᱱᱫᱮ ᱪᱤ ᱛᱷᱩᱢᱨ ᱠᱚᱴᱜᱮ ᱭᱚᱱᱩ ᱞᱟᱜᱪᱤ ᱟᱞᱟᱢᱟᱭᱟᱝ ᱢᱩ ᱨᱚᱢᱟᱜᱮ ᱴᱨᱟᱠᱷᱤᱵᱤ ᱧᱮᱢᱩ ᱥᱮᱨ ᱜᱩᱱᱩᱜᱮ ᱞᱟᱭᱟᱝ ᱫᱮᱭᱤᱱ ᱨᱮᱛᱤᱱᱟ ᱴᱩᱯᱩᱱᱟᱢ ᱵᱟᱜᱭᱟᱝ ᱛᱟᱥᱛᱟ ᱠᱟᱞᱢᱫᱮ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱛᱷᱚᱭᱚᱠ ᱪᱮ ᱨᱤᱨᱤ ᱪᱮᱱᱟ ᱱᱤᱞᱮᱱᱥ ᱜᱤᱞ ᱚᱭ ᱴᱩᱯᱩ ᱪᱚ ᱫᱮᱢᱩᱭᱱᱟ
1: ᱚ ᱫᱮᱵᱚᱝ ᱜᱩᱱᱡᱵᱟ ᱪᱮ ᱠᱷᱤᱨᱰᱚᱢᱟ ᱫᱮᱢᱚ
0: ᱫᱮᱢᱩᱭᱱ ᱛᱤᱱᱟ ᱴᱩᱯᱩ ᱜᱮ ᱛᱮᱜᱩᱝ ᱞᱮᱱᱥᱮᱱ ᱫᱮ ᱪᱮ ᱛᱷᱩᱢᱨ ᱠᱚᱴ ᱜᱮ ᱚᱱᱩ ᱞᱤᱠ ᱪᱮ ᱞᱟᱢᱟ ᱟᱭᱟᱝ ᱢᱚ ᱨᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱴᱨᱟᱠᱤ ᱵᱤ ᱧᱮᱢᱩ ᱥᱮᱨ ᱜᱩᱱᱩᱜᱟ ᱢᱟᱝᱞᱮᱱ ᱫᱮ ᱥᱟᱡᱜᱟᱞ ᱪᱮ ᱠᱟᱨᱡᱮ
1: ᱚ ᱜᱮ ᱟᱠᱤ ᱥᱮ ᱫᱩᱢᱟ ᱪᱷᱚᱞᱟ ᱛᱷᱟᱛᱚᱣᱟ ᱥᱮ ᱚᱞᱜᱩᱱᱮ ᱛᱷᱟᱠᱟᱝᱜᱟ ᱫᱤᱥᱮ ᱯᱟᱭ ᱚᱣᱟ ᱪᱤᱯᱷᱟᱱᱮ
0: ᱠᱚᱡᱮᱱ ᱪᱮ
1: ᱤᱡᱩᱱᱮ ᱨᱚᱝᱜᱟ ᱪᱮᱝᱜᱟ ᱢᱟᱞ ᱪᱤᱯᱷᱟᱱᱮ ᱛᱮᱡᱩᱱᱮ ᱨᱚᱝᱜᱟ ᱯᱷᱟᱱᱟ ᱢᱚᱥᱟᱝ ᱥᱟᱱᱤᱱ ᱫᱮᱭᱚ
0: ᱟᱫᱤ
1: ᱫᱤᱣᱟᱜᱟ ᱫᱤᱢᱮᱭᱚ ᱫᱟᱫᱟ ᱪᱮᱱ ᱧᱮᱱ ᱠᱷᱟᱭᱚ
0: ᱟᱫᱤ
1: ᱡᱩᱛᱟᱝᱟ ᱨᱮᱣᱟ ᱡᱚᱠᱚᱫᱟ
0: ᱭᱟ ᱪᱚᱨᱤ ᱣᱟ ᱪᱷᱟᱡᱩᱠᱟ
1: ᱟᱭ ᱠᱚ ᱪᱚᱢᱚ ᱜᱚᱛᱤ ᱥᱤᱞᱚ ᱥᱮᱜᱩᱱᱚ ᱛᱟᱪᱩ ᱨᱮᱣᱟ ᱡᱟ
0: ᱟᱭ ᱠᱚ ᱪᱚᱢᱚ ᱜᱚᱛᱟᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱵᱡᱟ ᱡᱚᱝᱟ ᱪᱚᱠᱩᱱᱩᱱᱫᱟ
1: ᱢᱟᱨᱟ ᱥᱤᱞᱚ ᱡᱮᱞᱮ ᱱᱟᱱᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱞᱚᱭᱚᱝ ᱫᱟ ᱛᱟᱢ ᱡᱚᱞᱟ ᱡᱮ
0: ᱥᱤᱞᱚ
1: ᱦᱚᱞᱟ
0: ᱟᱨᱮ ᱪᱟ ᱠᱤᱵᱤ ᱦᱤᱜ ᱠᱷᱟᱠᱚ ᱦᱟᱥᱟᱡ ᱦᱤᱠᱟᱞᱟ ᱛᱟᱜᱞᱟᱥᱤᱱ ᱡᱟᱞᱟ ᱦᱤᱞᱚ अरे तिना थंगा जिमा गलेन छ नङा छिङ आछु लेन छ नि उडा छ
1: तु रियो आज तु छु क्या
0: या छ रिवा छ जुकु क
1: छि छ क कोन छ कासो तासे के छुपा ज छि छ
0: या तिना थंगा जिमा गलेन छ नङा कोन छु छावरा अनि कासो टाकि नि ग छुपा से गुनु ग दोनलेन ते यंग छु छक टुपु खि रिवा जन त को जि लागो
1: या न त क्वाट छ दिमो
0: हे छु मे क तिना मन ते तंगा छु लेन छ दला नेम्बर गास छ तिना ने क क दिमो
1: ओया
0: ওই টুপো ছো দিমু
1: ও ছেন তোমা দিমু
0: দিমু ইয়ে তিনা টুপো গ তেজং তা গাছু লেন ছেন দঙ্গু সামাত খা খাবার থন থা
1: আ থে খাতন গনমা জমা ছো তা
0: আরে তিনা তা তাথং গ লেন ছেন দিন গাতা ছো দবি গ মংদস করিবা ইউ কুনই না
1: ওই যে ইয়া তুম কাটন ছে
0: চমে ক তিনা থং জি মা গ লেন ছেন গা দবি গ মংদস ছো রে বাজন তে কোট গি লাগো
1: ইয়া কাটন ছে
0: ইয়া চমে ক তিনা নিক ক দিমু
1: ইয়া দিমু
0: ইয়া Ya tukpu namba tina, tsamdani nga tsiya lama yang mu roma ge chakibi nye mu seyir gunu ge amanglende sanje nang ju yil. Re tina tukpu tsika yang ka lama kapar ton ta, chi tukpu ndi ge kapar nilay la tanga ta mintate lama yang mu roma ge amanglende sanje nang ju yil. Wey tukpu cho dimu?
2: Gonzapa dimu.
0: Dimu yin, ya tukmu ka tang tanga ngoma ge lian chan nga ariwa, sheli ariwa di ta tang ge lian chan nga kodik shema tanda gu tukmu tiri la.
2: अरे जी जी
0: अरे सिंखै गिना
2: ओ यिन यिन
0: अरे तिना ताथंग लेनसें दिनङा छोलमा लथरचिक मंगलिस गरिवा छिगुने इना
2: अरे रे लमा लथरचिक लमा खमोडोमा
0: अरे छो अनि मंगले अनि गरिवा छिग
2: ओया
0: अरे रे रे लेनसें नङा शुंगता लेनसें नछिक नङा दि छो रिवा छिगछिग मन्दा कुम थकरायङ छुसना लोलोंस गयोसेर कुका
2: अरे
0: मो अरे तिना लमा लथर चिक मंगर मंगल कंगरंग सला लमा फमु रोमा ग मंगल कंग सक छोरे वा छिग अ
2: क मंगल कंग ना छिसे
0: अरे तिना लमा फमु रोमा ग मंगल कंगरंग सगरा लमा लथर चिक मंगल कंगरंग सग ता थंग जी मा ग लेन छ नंगा छक लोलुंग ग रेवा जंत कोट ग लागो ओ
2: या या कोट छि तंदा गोस बा दज द शा ᱫᱟᱭᱤᱛᱨᱚ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱚ ᱛᱟᱥᱢᱟ ᱡᱟᱱᱤᱱᱟ ᱛᱟᱱᱛ ᱡᱮᱨᱛᱮ ᱟᱨᱮ ᱥᱮᱱᱡᱟᱝ ᱫᱟᱭᱤᱛᱨᱚ ᱡᱚᱛᱟᱝ ᱟᱪᱷᱩ ᱥᱩᱝᱜᱟᱛᱩᱝ ᱜᱩᱭᱩᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱱᱟᱪᱷᱩ ᱛᱟᱱᱛᱟᱝ ᱜᱩᱱᱡᱟᱵᱟ ᱫᱟᱭᱤᱛᱨᱚ ᱡᱚᱛᱟᱝ ᱟᱪᱷᱩ ᱥᱩᱝᱜᱟᱛᱩᱝ ᱜᱩᱭᱩᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱱᱟᱪᱷᱩ ᱛᱟᱱᱛᱟᱝ ᱜᱩᱱᱡᱟᱵᱟ ᱫᱟᱭᱤᱛᱨᱚ ᱡᱚᱛᱟᱝ ᱟᱪᱷᱩ ᱥᱩᱝᱜᱟᱛᱩᱝ ᱜᱩᱭᱩᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱱᱟᱪᱷᱩ ᱛᱟᱱᱛᱟᱝ ᱜᱩᱱᱡᱟᱵᱟ ᱫᱟᱭᱤᱛᱨᱚ ᱡᱚᱛᱟᱝ ᱟᱪᱷᱩ ᱥᱩᱝᱜᱟᱛᱩᱝ ᱜᱩᱭᱩᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱱᱟᱪᱷᱩ ᱛᱟᱱᱛᱟᱝ ᱜᱩᱱᱡᱟᱵᱟ ᱫᱟᱭᱤᱛᱨᱚ ᱡᱚᱛᱟᱝ ᱟᱪᱷᱩ ᱥᱩᱝᱜᱟᱛᱩᱝ ᱜᱩᱭᱩᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱱᱟᱪᱷᱩ ᱛᱟᱱᱛᱟᱝ ᱜᱩᱱᱡᱟᱵᱟ ᱫᱟᱭᱤᱛᱨᱚ ᱡᱚᱛᱟᱝ ᱟᱪᱷᱩ ᱥᱩᱝᱜᱟᱛᱩᱝ ᱜᱩᱭᱩᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱱᱟᱪᱷᱩ ᱛᱟᱱᱛᱟᱝ ᱜᱩᱱᱡᱟᱵᱟ ᱫᱟᱭᱤᱛᱨᱚ ᱡᱚᱛᱟᱝ ᱟᱪᱷᱩ ᱥᱩᱝᱜᱟᱛᱩᱝ ᱜᱩᱭᱩᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱱᱟᱪᱷᱩ ᱛᱟᱱᱛᱟᱝ ᱜᱩᱱᱡᱟᱵᱟ ᱫᱟᱭᱤᱛᱨᱚ ᱡᱚᱛᱟᱝ ᱟᱪᱷᱩ ᱥᱩᱝᱜᱟᱛᱩᱝ ᱜᱩᱭᱩᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱱᱟᱪᱷᱩ ᱛᱟᱱᱛᱟᱝ ᱜᱩᱱᱡᱟᱵᱟ ᱫᱟᱭᱤᱛᱨᱚ ᱡᱚᱛᱟᱝ ᱟᱪᱷᱩ ᱥᱩᱝᱜᱟᱛᱩᱝ ᱜᱩᱭᱩᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱱᱟᱪᱷᱩ ᱛᱟᱱᱛᱟᱝ ᱜᱩᱱᱡᱟᱵᱟ ᱫᱟᱭᱤᱛᱨᱚ ᱡᱚᱛᱟᱝ ᱟᱪᱷᱩ ᱥᱩᱝᱜᱟᱛᱩᱝ ᱜᱩᱭᱩᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱱᱟᱪᱷᱩ ᱛᱟᱱᱛᱟᱝ ᱜᱩᱱᱡᱟᱵᱟ ᱫᱟᱭᱤᱛᱨᱚ ᱡᱚᱛᱟᱝ ᱟᱪᱷᱩ ᱥᱩᱝᱜᱟᱛᱩᱝ ᱜᱩᱭᱩᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱱᱟᱪᱷᱩ ᱛᱟᱱᱛᱟᱝ ᱜᱩᱱᱡᱟᱵᱟ ᱫᱟᱭᱤᱛᱨᱚ ᱡᱚᱛᱟᱝ ᱟᱪᱷᱩ ᱥᱩᱝᱜᱟᱛᱩᱝ ᱜᱩᱭᱩᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱱᱟᱪᱷᱩ ᱛᱟᱱᱛᱟᱝ ᱜᱩᱱᱡᱟᱵᱟ ᱫᱟᱭᱤᱛᱨᱚ ᱡᱚᱛᱟᱝ ᱟᱪᱷᱩ ᱥᱩᱝᱜᱟᱛᱩᱝ ᱜᱩᱭᱩᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱱᱟᱪᱷᱩ ᱛᱟᱱᱛᱟᱝ ᱜᱩᱱᱡᱟᱵᱟ ᱫᱟᱭᱤᱛᱨᱚ ᱡᱚᱛᱟᱝ ᱟᱪᱷᱩ ᱥᱩᱝᱜᱟᱛᱩᱝ ᱜᱩᱭᱩᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱱᱟᱪᱷᱩ ᱛᱟᱱᱛᱟᱝ ᱜᱩᱱᱡᱟᱵᱟ ᱫᱟᱭᱤᱛᱨᱚ ᱡᱚᱛᱟᱝ ᱟᱪᱷᱩ ᱥᱩᱝᱜᱟᱛᱩᱝ ᱜᱩᱭᱩᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱱᱟᱪᱷᱩ ᱛᱟᱱᱛᱟᱝ ᱜᱩᱱᱡᱟᱵᱟ ᱫᱟᱭᱤᱛᱨᱚ ᱡᱚᱛᱟᱝ ᱟᱪᱷᱩ ᱥᱩᱝᱜᱟᱛᱩᱝ ᱜᱩᱭᱩᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱱᱟᱪᱷᱩ ᱛᱟᱱᱛᱟᱝ ᱜᱩᱱᱡᱟᱵᱟ ᱫᱟᱭᱤᱛᱨᱚ ᱡᱚᱛᱟᱝ ᱟᱪᱷᱩ ᱥᱩᱝᱜᱟᱛᱩᱝ ᱜᱩᱭᱩᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱱᱟᱪᱷᱩ ᱛᱟᱱᱛᱟᱝ ᱜᱩᱱᱡᱟᱵᱟ ᱫᱟᱭᱤᱛᱨᱚ ᱡᱚᱛᱟᱝ ᱟᱪᱷᱩ ᱥᱩᱝᱜᱟᱛᱩᱝ ᱜᱩᱭᱩᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱱᱟᱪᱷᱩ ᱛᱟᱱᱛᱟᱝ ᱜᱩᱱᱡᱟᱵᱟ ᱫᱟᱭᱤᱛᱨᱚ ᱡᱚᱛᱟᱝ ᱟᱪᱷᱩ ᱥᱩᱝᱜᱟᱛᱩᱝ ᱜᱩᱭᱩᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱱᱟᱪᱷᱩ ᱛᱟᱱᱛᱟᱝ ᱜᱩᱱᱡᱟᱵᱟ ᱫᱟᱭᱤᱛᱨᱚ ᱡᱚᱛᱟᱝ ᱟᱪᱷᱩ ᱥᱩᱝᱜᱟᱛᱩᱝ ᱜᱩᱭᱩᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱱᱟᱪᱷᱩ ᱛᱟᱱᱛᱟᱝ ᱜᱩᱱᱡᱟᱵᱟ ᱫᱟᱭᱤᱛᱨᱚ ᱡᱚᱛᱟᱝ ᱟᱪᱷᱩ ᱥᱩᱝᱜᱟᱛᱩᱝ ᱜᱩᱭᱩᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱱᱟᱪᱷᱩ ᱛᱟᱱᱛᱟᱝ ᱜᱩᱱᱡᱟᱵᱟ ᱫᱟᱭᱤᱛᱨᱚ ᱡᱚᱛᱟᱝ ᱟᱪᱷᱩ ᱥᱩᱝᱜᱟᱛᱩᱝ ᱜᱩᱭᱩᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱱᱟᱪᱷᱩ ᱛᱟᱱᱛᱟᱝ ᱜᱩᱱᱡᱟᱵᱟ ᱫᱟᱭᱤᱛᱨᱚ ᱡᱚᱛᱟᱝ ᱟᱪᱷᱩ ᱥᱩᱝ
3: ᱨᱚᱢᱚ
0: ᱨᱮᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱱᱤ ᱠᱚᱴᱤ ᱭᱚᱱᱩ ᱛᱟ ᱪᱩᱨ ᱜᱟᱱᱩ ᱜᱟ ᱞᱢᱟ ᱭᱟᱝ ᱢᱩᱡᱚ ᱢᱟᱜ ᱴᱨᱟᱠᱤ ᱵᱤ ᱱᱤᱢᱩ ᱥᱮᱨ ᱜᱩᱱᱩ ᱜᱟ ᱞᱮᱝ ᱛᱮ ᱟᱸᱫᱮ ᱟᱢᱟᱝ ᱞᱮ ᱛᱮ ᱭᱟ
3: ᱟᱞᱟ ᱟᱞᱟ ᱟᱞᱟ ᱭᱟᱝ ᱢᱚ ᱫᱩᱢᱟ ᱚ ᱚ ᱚ ᱛᱟᱝᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱛᱚᱠᱟ ᱥᱟᱡᱤ ᱠᱚᱠᱚ ᱭᱟ ᱠᱚᱨᱛᱤᱱ ᱥᱮ ᱠᱚᱨᱛᱤᱱ ᱥᱮ ᱛᱟ ᱟᱪᱷᱟ ᱱᱚᱨ ᱛᱷᱚᱨᱟ ᱛᱢᱤ ᱫᱩᱢᱟ ᱥᱮ ᱥᱟᱢᱵᱩ ᱧᱟᱞᱮᱱ ᱡᱮ ᱱᱚᱛᱮ ᱫᱚ ᱠᱚᱛᱤ ᱛᱚᱝᱜᱚ ᱱᱚ ᱢᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱱ ᱫᱚ
0: ᱱᱟᱪᱩ ᱥᱟᱢᱵᱩ ᱜᱮᱛᱟ ᱧᱟᱞᱮᱱ ᱡᱮ ᱜᱮᱛᱟ ᱵᱟᱠᱤ ᱢᱤ
3: ᱱᱟᱪᱤ ᱤᱭᱩᱥ ᱠᱮ ᱱᱚ ᱥᱮᱱᱟ
0: ᱟᱨᱮ ᱱᱤ ᱱᱟᱪᱩ ᱥᱟᱢᱵᱩ ᱜᱮ ᱧᱟᱞᱮᱱ ᱡᱮ ᱜᱮᱞᱮᱱ ᱡᱮ ᱜᱮᱛᱟ ᱵᱟᱠᱤ ᱢᱤ
3: ᱦᱟᱞᱟ ᱫᱟ ᱱᱟ ᱠᱟᱡᱤ ᱭᱟᱞᱮᱱ ᱛᱟᱱ ᱡᱤᱢᱤ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱩᱡᱮ ᱩᱠᱮ ᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱛᱤᱱ ᱧᱮᱱ ᱩᱠᱷᱟ ᱛᱮᱱ ᱱᱟᱛᱤ ᱭᱚᱢᱮ ᱨᱩ ᱧᱮᱱ ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱥᱚᱠᱩ ᱟᱨ ᱛᱟ ᱛᱷᱤᱞᱜᱨᱟ ᱛᱷᱤᱞᱜ ᱥᱩᱫ ᱚᱠᱟ ᱫᱟ
0: ᱨᱮ ᱧᱮᱱ ᱪᱷᱮᱨ ᱥᱚᱱ ᱱᱟᱛᱤ ᱱᱟᱝ ᱱᱮᱭᱟᱝ ᱪᱩᱞᱠᱷᱟ ᱛᱮ ᱜᱟᱱ ᱡᱤᱠ ᱨᱤᱣᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱤᱨᱮ
3: ᱭᱟ ᱠᱟᱫᱟ ᱛᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱟᱢᱮ ᱫᱚ ᱛᱚ ᱢᱚᱝᱜᱮ ᱦᱟᱞᱢᱟ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱞᱭᱟᱱ ᱪᱟᱢᱵᱩ ᱧᱟᱝ ᱫᱚᱜ ᱢᱮᱥᱮᱜᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱠᱟᱨᱮ ᱠᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱷᱩᱡᱮ ᱛᱚᱝᱜᱚ ᱜᱮ ᱪᱷᱩᱡᱮ ᱛᱚᱝᱜᱚ ᱜᱮ ᱮ ᱛᱟᱛᱮ ᱯᱷᱟᱵᱮ ᱫᱩᱢᱟᱜ ᱛᱮ ᱡᱮ ᱦᱟᱵᱮ ᱪᱟᱢᱵᱩᱛᱤ ᱢᱟᱨᱮ ᱠᱚᱱᱡᱚ ᱢᱮᱛᱚ ᱱᱟᱝᱜᱟ ᱪᱟᱢᱵᱩᱛᱤ ᱱᱤᱜᱩ ᱢᱟᱨᱮ ᱚᱡᱚ ᱠᱚ ᱨᱮᱠ ᱛᱟᱛᱟ ᱡᱩᱠ ᱫᱟᱛᱤ ᱫᱚᱠᱚᱛᱮ ᱧᱟᱢ ᱢᱮᱥᱤᱫᱟ ᱛᱟᱛᱟ ᱱᱤᱜᱩ ᱢᱟᱱᱟ ᱛᱷᱚᱣᱟ ᱛᱚᱱᱨᱮ
0: ᱟᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱷᱟᱝᱟ ᱡᱮ ᱢᱟᱜ ᱞᱮᱱ ᱥᱮᱱᱟᱝᱟ ᱟᱞᱢᱟ ᱯᱷᱟᱨᱣᱟ ᱫᱩᱢᱟᱜ ᱫᱮ ᱡᱤᱵᱤ ᱦᱟᱨᱤ ᱥᱮᱨ ᱜᱩᱱᱩ ᱛᱟᱨᱟ ᱢᱮᱛᱚ ᱱᱟᱝᱜᱟ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱱᱩ ᱧᱟᱢ ᱪᱤᱠᱞᱟᱝ ᱱᱩ ᱛᱮ ᱢᱟᱱᱟᱥ ᱜᱮᱛᱟ ᱪᱚ ᱨᱮᱣᱟᱡᱮᱱ ᱛᱮ ᱠᱚᱴᱤ ᱞᱟᱜᱚ
3: ᱚ ᱠᱚᱣᱟᱴᱨᱤᱱ ᱪᱤ ᱠᱚᱣᱟᱴᱨᱤᱱ ᱪᱤ ᱛᱟᱛᱮ ᱪᱚ ᱛᱚᱢᱚ ᱪᱚᱛᱟᱱ ᱪᱷᱟᱢᱮ ᱫᱚᱢᱟᱞᱟ ᱥᱚᱯᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱱᱛᱷᱟᱱ ᱟᱞᱤᱥᱤ ᱵᱟᱭᱚᱱ ᱞᱟ ᱪᱤᱠᱱᱤ
0: ᱠᱚᱣᱟᱴᱨᱤᱱ ᱪᱤ ᱨᱮᱴᱟᱨᱟ ᱪᱤ ᱛᱷᱟᱝᱟᱨ ᱡᱤᱢᱟ ᱜᱞᱮᱱ ᱥᱮᱱᱟᱝᱟ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱛᱩᱝᱜᱩ ᱪᱤ ᱠᱟᱛᱚᱜᱟ ᱟᱨᱤᱣᱟᱱᱫᱮ ᱱᱤᱱᱟᱱ ᱫᱟᱝ ᱡᱟᱛᱟᱝ ᱥᱮ ᱪᱩᱛᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱠᱟ ᱪᱤᱜ
3: ᱥᱟᱝᱜᱮ ᱚᱠ ᱫᱟᱝ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱨᱮ ᱛᱷᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱥᱮᱱᱟ ᱪᱚᱢ ᱪᱮᱝᱜᱩ ᱜᱚ
0: ᱭᱟ ᱛᱤᱱᱟᱱ ᱢᱮᱱ ᱛᱮ ᱛᱟᱝᱟ ᱪᱩ ᱞᱮᱱ ᱥᱮᱱᱫᱟ ᱞᱟ ᱧᱮᱢᱵᱟᱨ ᱜᱟᱥᱮ ᱥᱮ ᱛᱤᱱᱟᱱ ᱤᱠᱚ ᱠᱟᱫᱤᱢᱩ
3: ᱭᱟ ᱱᱟ ᱫᱮᱢᱩ ᱫᱮᱢᱩ
0: ᱭᱟ ya topna ba tina chamdani nga chi alma yang mu ro ma ge alakel ni mu tang jwan ga me cha khi bi ni mu ser gu nu ga mangles ge lang nu de sen ji nang ju yil